0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि मनुष्य सभी स्थितियों और अवस्थाओं में मानव जीवन के सम्मान और उसकी सुरक्षा के प्रति समर्पित रहें तथा जीवन को ईश्वर का वरदान माने। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे प्रसारण में प्रस्तुत है सामयिक लोकोपकारी चर्चा भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओ, वेनेजुएला में गुरुवार 25 जून को आए दो शक्तिशाली भूकंपों से जान माल की भीषण हानि हुई है, जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र एजेंसियां प्रभावित आबादी तक मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए लगी हुई हैं। वेनेजुएला के अधिकारियों ने सोमवार 1

0: जुलाई को बताया कि भूकंप से कम 1,719 लोगों की मौत हो गई है और लगभग 5,000 लोग घायल हुए हैं, साथ ही लगभग 12,000 लोग विस्थापित हुए हैं, जबकि लापता लोगों की संख्या की पुष्टि अभी भी नहीं हुई है और घायलों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। भूकंपों से 7 राज्य प्रभावित हुए हैं, लेकिन हताहतों की सबसे अधिक संख्या लागोएरा राज्य और काराकास जिले में हो रही है। लगभग 2,500 इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं, जिनमें से कई पूरी तरह से ढह गई हैं। प्रभावित क्षेत्रों में हालात अब भी खतरनाक बने हुए हैं। शुरुआती भूकंपों के बाद से लगभग 500 भूकंप पश्चात झटके दर्ज किए गए हैं। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं पूजा यादव और सचिन गौड़।
1: वेनेजुएला में 25 जून को आए 2 शक्तिशाली भूकंपों से जान माल की भीषण हानि हुई है, जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र एजेंसियां प्रभावित आबादी तक मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए तैयारियों में जुट गई हैं। राजधानी कराकस समेत अन्य इलाकों में बड़े पैमाने पर इमारतों व बुनियादी ढांचों को नुकसान पहुंचा है और मलबे में लोगों के दबे होने की आशंका है। रिक्टर पैमाने पर इन भूकंपों की तीव्रता क्रमशः 7.2 और 7.5 आंकी गई है, जिसके बाद देश में फिलहाल आपात स्थिति की घोषणा कर दी गई है। वेनेजुएला के विभिन्न हिस्सों में अग्रिम पंक्ति के राहत कर्मियों को तैनात किया जा रहा है। दुनिया भर से देशों ने मदद का प्रस्ताव दिया है और अंतर्राष्ट्रीय सहायता का पहुंचाना शुरू हो गया है।
2: अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन का कहना है कि जीवन रक्षक चिकित्सा देखभाल और दवाओं की भी आवश्यकता है, विशेष रूप से शुरुआती कुछ दिनों में, जिससे लोगों के जीवन को बचाया जा सके। विश्व स्वास्थ्य संगठन के क्षेत्रीय कार्यालय ने बताया कि चिकित्सा कर्मियों पर ये तय करने का दबाव है कि किन घायलों का इलाज किया जाए, क्योंकि बड़े पैमाने पर स्वास्थ्य आवश्यकताएं उपजी हैं। मानवीय सहायता एजेंसियों के अनुसार ये भूकंप ऐसे समय में आया है जब देश पहले से ही एक नाजुक मानवीय स्थिति से जूझ रहा है। लंबे समय से जारी आर्थिक संकट और मानवाधिकार उल्लंघन मामलों की वजह से लाखों नागरिक अन्य देशों में शरण लेने के लिए मजबूर हुए हैं।
0: अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO ने बताया कि मध्य पूर्व संकट की वजह से फारस की खाड़ी में फंसे हुए 2,500 समुद्री नाविकों को हाल के दिनों में सुरक्षित बाहर निकालने में सफलता मिली है। समुद्री नाविकों को इस जल क्षेत्र से सुरक्षित बाहर निकालने की योजना मध्य पूर्व में भड़के टकराव पर विराम लगाने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान के बीच जारी वार्ता से जुड़ी है। इस सिलसिले में पिछले सप्ताह ही दोनों देशों ने एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके आधार पर बातचीत को आगे बढ़ाया जा रहा है। दोनों देशों के बीच वार्ता यदि सफल हुई तो हॉर्मुज जल डमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों की आवाजाही 28 फरवरी को भड़के युद्ध से पहले के स्तर पर वापिस पहुँचने की उम्मीद है। उस समय हर दिन यहाँ से लगभग 130 जहाज गुजरते थे, मगर लड़ाई के दौरान उनकी रफ्तार लगभग पूरी तरह से ठप हो गई। लगातार अपेक्षाकृत सुधार है, लेकिन अब भी पिछले 3 दिनों के दौरान 20 से 30 जहाज ही गुजर रहे हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सचिन गौड़।
2: UN एजेंसी के अनुसार बचाव अभियान शुरू होने के पहले 3 दिनों के भीतर 115 जहाजों में सवार नाविक दल के 2,500 सदस्यों को इस जल क्षेत्र से बाहर लाया गया। समुद्री मामलों के लिए UN एजेंसी की अगुवाई में ये बचाव अभियान संचालित किया जा रहा था, लेकिन गुरुवार को ओमान के तट के नजदीक एक जहाज पर हमला होने के बाद इन प्रयासों को रोकना पड़ा है। जहाजों की आवाजाही में भीषण गिरावट आने का असर पूरी दुनिया में महसूस किया गया था। तेल, गैस, उर्वरक समेत अन्य अहम सामग्री की आपूर्ति में व्यवधान आया, जिसके प्रभाव लंबे समय तक जारी रह सकते हैं।
0: दुनिया भर में ताप लहरों का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बार यूरोप इस समय भीषण गर्मी की अभूतपूर्व लहर की चपेट में है। फ्रांस और स्पेन ने जून महीने के सबसे गर्म दिनों का रिकॉर्ड दर्ज किया है, जबकि जर्मनी, स्विट्जरलैंड और अन्य देशों में रेड अलर्ट जारी किए गए हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO ने आगाह किया है कि अगले 2 सप्ताह तक तापमान सामान्य से 3 से 10 डिग्री सेल्सियस अधिक रह सकता है, जिससे गर्मी का दबाव, जंगलों में आग, सूखे और चरम मौसमी घटनाओं का खतरा बढ़ेगा। गर्मी ऐसा कि बाहर निकलना मुश्किल और घर के अंदर रहना भी बेहाल है। ऐसे में खुद को कैसे सुरक्षित रखा जाए? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने इसके लिए कुछ आसान उपाय सुझाए हैं। इसके बारे में बता रही हैं अंशु शर्मा।
3: अगर गर्मी ने आपको भी बेहाल कर रखा है तो कुछ छोटे और आसान एहतियाती कदम झुलसते मौसम में खुद को और अपने घर को ठंडा व सुरक्षित रखने में मदद कर सकते हैं। सबसे पहले मौसम के पूर्वानुमान और ताप लहर की चेतावनियों पर नजर रखें। घर में पर्याप्त पानी और जरूरी दवाएं रखें और जांच लें कि पंखे व अन्य उपकरण ठीक से काम कर रहे हैं। दिन में धूप वाली खिड़कियों के पर्दे बंद रखें। रात में तापमान घटे तो आमने सामने की खिड़कियां खोलकर घर में जमा गर्मी बाहर निकालें। एयर कंडीशनर के बिना भी ठंडक बनाए रखी जा सकती है, जैसे कि पंखे बहुत कम बिजली खर्च करते हैं। गीली खस की चटाइयां, छाया और हवा की आर पार आवाजाही भी घर को प्राकृतिक रूप से ठंडा रखने में मदद करती हैं। प्यास लगने का इंतजार ना करें, दिन भर थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें, हल्का भोजन करें और दिन के सबसे गर्म समय में बाहर जाने से बचें। चक्कर, सिरदर्द, मितली या बहुत अधिक पसीना आए तो तुरंत किसी ठंडी जगह पर जाएं, आराम करें और पानी पिएं। बेहोशी, भ्रम या शरीर का तापमान बढ़ना लू लगने का संकेत हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में तत्काल चिकित्सा सहायता लें। और सबसे अहम, बुजुर्गों, बच्चों, गर्भवती महिलाओं और अकेले रहने वाले लोगों का हालचाल जरूर पूछें। ताप लहर के दौरान आपकी एक फोन कॉल भी किसी की जान बचा सकती है।
0: पूरी तरह से चालक रहित कार चलाने के लिए स्वचालित ड्राइविंग तकनीक के लिए पहली बार एक नियम व्यवस्था तय की गई है। यूरोप में संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक आयोग ने वाहनों में स्वचालित ड्राइविंग तकनीक के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों को मंजूरी दे दी है, जिससे चालक रहित वाहनों के लिए रास्ता साफ हो गया है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं महबूब खान।
4: जरा कल्पना करें कि हमें कार से एक या दो घंटे का सफर तय करके कहीं जाना है और वो कार स्वतः चलेगी, यानी उसे चलाने के लिए किसी ड्राइवर की जरूरत नहीं होगी। तो हम कार की सीट को बिस्तर बनाकर आराम से सो जाएं, कार मंजिल पर पहुंचकर हमें जगा दे और बस सफर पूरा। ये अब कोई कल्पना भर की बात नहीं, बल्कि कुछ ही महीनों में वास्तविकता बनने जा रही है। अनेक देशों में पहले ही इन स्वचालित वाहनों को परीक्षण के तौर पर चलाया जा रहा है। उन्हें सड़कों पर चलाने के लिए नियम कानूनों में बदलाव किए जा रहे हैं। इस व्यवस्था का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि स्वचालित वाहन कड़े सुरक्षा मानकों पर खरे उतरें, जिससे देशों की सरकारों, उद्योग जगत और आम लोगों का भरोसा मजबूत हो सके। ये नियामक ढांचा वाहन निर्माताओं को अलग अलग देशों में बिखरे हुए नियमों की स्थिति से बचाते हुए स्पष्ट दिशा, उपभोक्ताओं को अधिक भरोसा और विभिन्न बाजारों में सुरक्षित ढंग से नवाचार को विस्तार देने का मार्ग मुहैया कराता है।
0: आज के सभी विषय संयुक्त राष्ट्र हिंदी समाचार से लिए गए थे और अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत और उसके बाद समाचार।

0: आप वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा लियो 14वें ने जुलाई माह की प्रार्थना की प्रेरिताई में विश्वासियों को मानव जीवन के सम्मान के लिए प्रार्थना करने हेतु आमंत्रित किया है, ताकि सभी हर इंसान की अनोखी और विशिष्ट कीमत को पहचान सकें और उसकी रक्षा कर सकें। उन्होंने गुरुवार को प्रे विद द पोप वीडियो जारी किया, जिसे संत पापा के विश्वव्यापी प्रार्थना नेटवर्क ने तैयार किया है। अपनी प्रार्थना में संत पापा ने माना कि ईश्वर ने हम में से प्रत्येक को प्यार से बनाया है और हमें पूर्ण जीवन जीने के लिए बुलाया है। संत पापा ने कहा, हर इंसान एक पवित्र वरदान है जो ईश्वर के चेहरे को दिखाता है। अस्तित्व के पहले पल से लेकर धरती पर उनके सफर के आखिरी सांस तक, आज हम हर इंसान की अनोखी और कभी न दोहराई जा सकने वाली कीमत को पहचानने और उसकी रक्षा करने की कृपा मांगते हैं। उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की कि हम बिना किसी शर्त के जीवन का स्वागत करना, नाजुक चीजों का प्यार से ख्याल रखना, हर मोड़ पर सम्मान से साथ देना और उन लोगों का साहस के साथ बचाव करना सीखना जिनकी कोई आवाज नहीं है। संत पापा लियो ने प्रभु से कहा कि जब हम उदासीनता या छोड़ देने की सोच में पड़ जाते हैं और जब हम दूसरों में प्यार के लायक इंसान नहीं देख पाते, तो हमें माफ कर दें। उन्होंने कहा, हमें एक नया दिल दे जो हमेशा जीवन चुनने के लिए तैयार हो और ऐसे उदार हाथ दे जो ठोस कामों से उनकी रक्षा करें। संत पापा ने प्रार्थना की कि प्रभु अपनी कलीसिया को जीवन के सुसमाचार का जीता जागता गवाह बनने में मदद करें, एक खुला घर जहां हर जीवन के लिए खुशी मनाई जाती है, जहां कोई भी खुद को अनचाहा महसूस नहीं करता और जहां इज्जत की हमेशा सम्मान और रक्षा की जाती है। और शनिवार 4 जुलाई को संत पापा लियो 14वें का लंपेदूसा का दौरा संत पापा फ्रांसिस के खोले गए रास्ते को आगे बढ़ाने वाला है। 2013 में संत पापा फ्रांसिस की पहली प्रेरितिक यात्रा ने इस छोटे से भूमध्य सागरीय द्वीप को प्रवासियों और शरणार्थियों के साथ एकजुटता का एक वैश्विक प्रतीक बना दिया था। उस ऐतिहासिक दौरे में संत पापा फ्रांसिस ने उदासीनता के भूमंडलीकरण की निंदा की थी और एक ऐसा सवाल पूछा था जो आज भी जोर से गूंजता है, तुम्हारा भाई कहाँ है? जेस्विट प्रवासी सेवा JRS के अंतर्राष्ट्रीय वकालत की सलाहकार अमाया के लिए द्वीप में संत पापा लियो की मौजूदगी एक अहम समय पर हुई है और यह एक ऐसा संदेश देती है जो इंसान को केंद्र में रखता है। वे कहती हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि संत पापा लियो के दिल में शरणार्थियों और प्रवासियों के लिए एक खास जगह है। वे बताती हैं कि संत पापा हमेशा गरीबों, कमजोर और बहिष्कृत लोगों को सुसमाचार संदेश के खास पाने वालों के तौर पर देखते हैं और लंपेदूसा के दौरे को उस यकीन का एक ठोस सबूत मानते हैं। वे यह भी बताती हैं कि उन्होंने हाल ही में शरणार्थियों के स्टेटस से जुड़े 1951 के सम्मेलन की 75वीं सालगिरह मनाई है और दूसरे विश्व युद्ध के बाद हुए अंतर्राष्ट्रीय समझौता की हमेशा रहने वाली अहमियत पर सोचा है, ताकि शरणार्थियों के अधिकारों की रक्षा की जा सके और जो लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर हैं, उन्हें कानूनी सुरक्षा दी जा सके। उनका मानना है कि संत पापा का संदेश लोगों को सीमा पर होने वाली रोकी जा सकने वाली मौतों की जिम्मेदारी लेने और दुख झेलने वालों के साथ रोने की क्षमता वापस लाने के लिए लगातार कहता रहता है। वे बताती हैं कि संत पापा बार बार उन देशों और संकटों की ओर ध्यान दिलाते हैं जो अक्सर अंतर्राष्ट्रीय शीर्षक से गायब हो जाते हैं। अपनी प्रार्थनाओं में म्यांमार और सूडान जैसी जगहों को लगातार याद करते हैं और दुनिया को उन बेगुनाह पीड़ितों की याद दिलाते हैं जिनकी तकलीफ को भुलाया नहीं जाना चाहिए। उधर इस सप्ताहांत अमेरिका में हर जगह पटाखे, हॉट डॉग और देशभक्ति के गाने बजेंगे, क्योंकि देश अपनी स्थापना की 250वीं सालगिरह मना रहा है। लेकिन इन सभी समारोहों के बीच एक पुरोहित प्रार्थना और एकता पर ध्यान दे रहे हैं। विस्कोंसिन में चैंपियन की माता मरियम के राष्ट्रीय तीर्थ स्थल के रेक्टर फादर अंतोनी स्टीफेंस CPM ने देशवासियों के लिए एक नोबीना लिखा, 9 दिन 1 से 9 जुलाई अमेरिका के लिए प्रार्थना करने और पूरे देश में एकता, पवित्रता और नवीनता के लिए माता मरियम से दुआ मांगने के लिए है। 50 लाख से ज्यादा प्रार्थना कार्ड छप चुके हैं और लेख लिखे जा चुके हैं। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, राष्ट्रीय तीर्थालय अमेरिका के संतों, धन्य और आदरणीय एवं ईश सेवकों को समर्पित एक खास प्रदर्शनी का भी आयोजन कर रहा है। अमेरिका में पहली और एकमात्र स्वीकृत मरियम के दर्शन स्थल चैंपियन की माता मरियम का राष्ट्रीय तीर्थ स्थल अमेरिका के कैथोलिक संतों की प्रदर्शनी की जगह है। फादर स्टीफेंस ने बताया कि तीर्थालय सच में भक्तों के बीच भक्ति को बढ़ावा देने की जगह है। और विश्व खाद्य क्रम WFP ने नाइजीरिया में तेजी से बिगड़ती खाद्य सुरक्षा की स्थिति पर चिंता जताई है। हिंसा से प्रभावित 9 उत्तरी राज्यों में 17 मिलियन से ज्यादा लोग खाद्य संकट, आपातकाल या बड़ी मुसीबतों का सामना कर रहे हैं। 3 उत्तरी पूर्वी राज्यों में गंभीर खाद्य असुरक्षा वाले लोगों की संख्या बढ़कर 6.2 मिलियन हो गई है, लेकिन WFP अभी सिर्फ 7,40,000 लोगों की मदद कर पा रहा है, जिससे लगभग 5.5 मिलियन लोग, खासकर बच्चे, जीवन रक्षक भोजन और पोषण सहायता के बिना रह गए हैं। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।
1: आइए हम मिलकर संत पापा के साथ चलें। संत पापा की प्रेरिताएं शांति, आशा, करुणा में मदद करें। संत पापा का समर्थन करें। संत पेत्रुस के पुण्य कार्य हेतु दान करें। वेबसाइट www.obolodesanpietro.va पर जरूर जाएं।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि मनुष्य सभी स्थितियों और अवस्थाओं में मानव जीवन के सम्मान और उसकी सुरक्षा के प्रति समर्पित रहें तथा जीवन को ईश्वर का वरदान माने। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे प्रसारण में प्रस्तुत है सामायिक लोकोपकारी चर्चा भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओं, वेनेजुएला में गुरुवार 25 जून को आए दो शक्तिशाली भूकंपों से जान माल की भीषण हानि हुई है, जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र एजेंसियां प्रभावित आबादी तक मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए लगी हुई हैं। वेनेजुएला के अधिकारियों ने सोमवार 1 जुलाई को बताया कि भूकंप से कम 1,719 लोगों की मौत हो गई है और लगभग 5,000 लोग घायल हुए हैं, साथ ही लगभग 12,000 लोग विस्थापित हुए हैं, जबकि लापता लोगों की संख्या की पुष्टि अभी भी नहीं हुई है और घायलों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। भूकंपों से 7 राज्य प्रभावित हुए हैं, लेकिन हताहतों की सबसे अधिक संख्या लागोएरा राज्य और काराकास जिले में हो रही है। लगभग 2,500 इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं, जिनमें से कई पूरी तरह से ढह गई हैं। प्रभावित क्षेत्रों में हालात अब भी खतरनाक बने हुए हैं। शुरुआती भूकंपों के बाद से लगभग 500 भूकंप पश्चात झटके दर्ज किए गए हैं। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं पूजा यादव और सचिन गौड़।
3: वेनेजुएला में 25 जून को आए दो शक्तिशाली भूकंपों से जान माल की भीषण हानि हुई है, जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र एजेंसियां प्रभावित आबादी तक मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए तैयारियों में जुट गई हैं। राजधानी कराकस समेत अन्य इलाकों में बड़े पैमाने पर इमारतों व बुनियादी ढांचों को नुकसान पहुंचा है और मलबे में लोगों के दबे होने की आशंका है। रिक्टर पैमाने पर इन भूकंपों की तीव्रता क्रमशः 7.2 और 7.5 आंकी गई है, जिसके बाद देश में फिलहाल आपात स्थिति की घोषणा कर दी गई है। वेनेजुएला के विभिन्न हिस्सों में अग्रिम पंक्ति के राहत कर्मियों को तैनात किया जा रहा है। दुनिया भर से देशों ने मदद का प्रस्ताव दिया है और अंतर्राष्ट्रीय सहायता का पहुंचाना शुरू हो गया है।
4: अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन का कहना है कि जीवन रक्षक चिकित्सा देखभाल और दवाओं की भी आवश्यकता है, विशेष रूप से शुरुआती कुछ दिनों में, जिससे लोगों के जीवन को बचाया जा सके। विश्व स्वास्थ्य संगठन के क्षेत्रीय कार्यालय ने बताया कि चिकित्सा कर्मियों पर ये तय करने का दबाव है कि किन घायलों का इलाज किया जाए, क्योंकि बड़े पैमाने पर स्वास्थ्य आवश्यकताएं उपजी हैं। मानवीय सहायता एजेंसियों के अनुसार ये भूकंप ऐसे समय में आया है जब देश पहले से ही एक नाजुक मानवीय स्थिति से जूझ रहा है। लंबे समय से जारी आर्थिक संकट और मानवाधिकार उल्लंघन मामलों की वजह से लाखों नागरिक अन्य देशों में शरण लेने के लिए मजबूर हुए हैं।
2: अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO ने बताया कि मध्य पूर्व संकट की वजह से फारस की खाड़ी में फंसे हुए 2,500 समुद्री नाविकों को हाल के दिनों में सुरक्षित बाहर निकालने में सफलता मिली है। समुद्री नाविकों को इस जल क्षेत्र से सुरक्षित बाहर निकालने की योजना मध्य पूर्व में भड़के टकराव पर विराम लगाने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान के बीच जारी वार्ता से जुड़ी है। इस सिलसिले में पिछले सप्ताह ही दोनों देशों ने एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके आधार पर बातचीत को आगे बढ़ाया जा रहा है। दोनों देशों के बीच वार्ता यदि सफल हुई तो हॉर्मुज जल डमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों की आवाजाही 28 फरवरी को भड़के युद्ध से पहले के स्तर पर वापिस पहुंचने की उम्मीद है। उस समय हर दिन यहाँ से लगभग 130 जहाज गुजरते थे, मगर लड़ाई के दौरान उनकी रफ्तार लगभग पूरी तरह से ठप हो गई। लगातार अपेक्षाकृत सुधार है, लेकिन अब भी पिछले 3 दिनों के दौरान 20 से 30 जहाज ही गुजर रहे हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सचिन गौड़।
4: यूएन एजेंसी के अनुसार बचाव अभियान शुरू होने के पहले 3 दिनों के भीतर 115 जहाजों में सवार नाविक दल के 2500 सदस्यों को इस जल क्षेत्र से बाहर लाया गया। समुद्री मामलों के लिए यूएन एजेंसी की अगुवाई में ये बचाव अभियान संचालित किया जा रहा था, लेकिन गुरुवार को ओमान के तट के नजदीक एक जहाज पर हमला होने के बाद इन प्रयासों को रोकना पड़ा है। जहाजों की आवाजाही में भीषण गिरावट आने का असर पूरी दुनिया में महसूस किया गया था। तेल, गैस, उर्वरक समेत अन्य अहम सामग्री की आपूर्ति में व्यवधान आया, जिसके प्रभाव लंबे समय तक जारी रह सकते हैं।
2: दुनिया भर में ताप लहरों का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बार यूरोप इस समय भीषण गर्मी की अभूतपूर्व लहर की चपेट में है। फ्रांस और स्पेन ने जून महीने के सबसे गर्म दिनों का रिकॉर्ड दर्ज किया है, जबकि जर्मनी, स्विट्जरलैंड और अन्य देशों में रेड अलर्ट जारी किए गए हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO ने आगाह किया है कि अगले 2 सप्ताह तक तापमान सामान्य से 3 से 10 डिग्री सेल्सियस अधिक रह सकता है, जिससे गर्मी का दबाव, जंगलों में आग, सूखे और चरम मौसमी घटनाओं का खतरा बढ़ेगा। गर्मी ऐसा कि बाहर निकलना मुश्किल और घर के अंदर रहना भी बेहाल है। ऐसे में खुद को कैसे सुरक्षित रखा जाए? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने इसके लिए कुछ आसान उपाय सुझाए हैं। इसके बारे में बता रही हैं अंशु शर्मा।
5: अगर गर्मी ने आपको भी बेहाल कर रखा है तो कुछ छोटे और आसान एहतियाती कदम झुलसते मौसम में खुद को और अपने घर को ठंडा व सुरक्षित रखने में मदद कर सकते हैं। सबसे पहले मौसम के पूर्वानुमान और ताप लहर की चेतावनियों पर नजर रखें। घर में पर्याप्त पानी और जरूरी दवाएं रखें और जांच लें कि पंखे व अन्य उपकरण ठीक से काम कर रहे हैं। दिन में धूप वाली खिड़कियों के पर्दे बंद रखें। रात में तापमान घटे तो आमने सामने की खिड़कियां खोलकर घर में जमा गर्मी बाहर निकालें। एयर कंडीशनर के बिना भी ठंडक बनाए रखी जा सकती है, जैसे कि पंखे बहुत कम बिजली खर्च करते हैं। गीली खस की चटाइयां, छाया और हवा की आर पार आवाजाही भी घर को प्राकृतिक रूप से ठंडा रखने में मदद करती हैं। प्यास लगने का इंतजार ना करें, दिन भर थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें, हल्का भोजन करें और दिन के सबसे गर्म समय में बाहर जाने से बचें। चक्कर, सिरदर्द, मितली या बहुत अधिक पसीना आए तो तुरंत किसी ठंडी जगह पर जाएं, आराम करें और पानी पिएं। बेहोशी, भ्रम या शरीर का तापमान बढ़ना लू लगने का संकेत हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में तत्काल चिकित्सा सहायता लें। और सबसे अहम, बुजुर्गों, बच्चों, गर्भवती महिलाओं और अकेले रहने वाले लोगों का हालचाल जरूर पूछें। ताप लहर के दौरान आपकी एक फोन कॉल भी किसी की जान बचा सकती है।
2: पूरी तरह से चालक रहित कार चलाने के लिए स्वचालित ड्राइविंग तकनीक के लिए पहली बार एक नियम व्यवस्था तय की गई है। यूरोप में संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक आयोग ने वाहनों में स्वचालित ड्राइविंग तकनीक के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों को मंजूरी दे दी है, जिससे चालक रहित वाहनों के लिए रास्ता साफ हो गया है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं महबूब खान।
6: जरा कल्पना करें कि हमें कार से 1 या 2 घंटे का सफर तय करके कहीं जाना है और वो कार स्वतः चलेगी, यानी उसे चलाने के लिए किसी ड्राइवर की जरूरत नहीं होगी। तो हम कार की सीट को बिस्तर बनाकर आराम से सो जाएं, कार मंजिल पर पहुंचकर हमें जगा दे और बस सफर पूरा। ये अब कोई कल्पना भर की बात नहीं, बल्कि कुछ ही महीनों में वास्तविकता बनने जा रही है। अनेक देशों में पहले ही इन स्वचालित वाहनों को परीक्षण के तौर पर चलाया जा रहा है। उन्हें सड़कों पर चलाने के लिए नियम कानूनों में बदलाव किए जा रहे हैं। इस व्यवस्था का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि स्वचालित वाहन कड़े सुरक्षा मानकों पर खरे उतरें, जिससे देशों की सरकारों, उद्योग जगत और आम लोगों का भरोसा मजबूत हो सके। ये नियामक ढांचा वाहन निर्माताओं को अलग अलग देशों में बिखरे हुए नियमों की स्थिति से बचाते हुए स्पष्ट दिशा, उपभोक्ताओं को अधिक भरोसा और विभिन्न बाजारों में सुरक्षित ढंग से नवाचार को विस्तार देने का मार्ग मुहैया कराता है।
2: आज के सभी विषय संयुक्त राष्ट्र हिंदी समाचार से लिए गए थे। और अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत और उसके बाद समाचार।

आप वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा लियो 14वें ने जुलाई माह की प्रार्थना की प्रेरिताई में विश्वासियों को मानव जीवन के सम्मान के लिए प्रार्थना करने हेतु आमंत्रित किया है, ताकि सभी हर इंसान की अनोखी और विशिष्ट कीमत को पहचान सकें और उसकी रक्षा कर सकें। उन्होंने गुरुवार को प्रे विद द पोप वीडियो जारी किया, जिसे संत पापा के विश्वव्यापी प्रार्थना नेटवर्क ने तैयार किया है। अपनी प्रार्थना में संत पापा ने माना कि ईश्वर ने हम में से प्रत्येक को प्यार से बनाया है और हमें पूर्ण जीवन जीने के लिए बुलाया है। संत पापा ने कहा, हर इंसान एक पवित्र वरदान है जो ईश्वर के चेहरे को दिखाता है। अस्तित्व के पहले पल से लेकर धरती पर उनके सफर के आखिरी सांस तक, आज हम हर इंसान की अनोखी और कभी न दोहराई जा सकने वाली कीमत को पहचानने और उसकी रक्षा करने की कृपा मांगते हैं। उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की कि हम बिना किसी शर्त के जीवन का स्वागत करना, नाजुक चीजों का प्यार से ख्याल रखना, हर मोड़ पर सम्मान से साथ देना और उन लोगों का साहस के साथ बचाव करना सीखना जिनकी कोई आवाज नहीं है। संत पापा लियो ने प्रभु से कहा कि जब हम उदासीनता या छोड़ देने की सोच में पड़ जाते हैं और जब हम दूसरों में प्यार के लायक इंसान नहीं देख पाते, तो हमें माफ कर दें। उन्होंने कहा, हमें एक नया दिल दे जो हमेशा जीवन चुनने के लिए तैयार हो और ऐसे उदार हाथ दे जो ठोस कामों से उनकी रक्षा करें। संत पापा ने प्रार्थना की कि प्रभु अपनी कलीसिया को जीवन के सुसमाचार का जीता जागता गवाह बनने में मदद करें, एक खुला घर जहां हर जीवन के लिए खुशी मनाई जाती है, जहां कोई भी खुद को अनचाहा महसूस नहीं करता और जहां इज्जत की हमेशा सम्मान और रक्षा की जाती है। और शनिवार 4 जुलाई को संत पापा लियो 14वें का लंपेदूसा का दौरा संत पापा फ्रांसिस के खोले गए रास्ते को आगे बढ़ाने वाला है। 2013 में संत पापा फ्रांसिस की पहली प्रेरितिक यात्रा ने इस छोटे से भूमध्य सागरीय द्वीप को प्रवासियों और शरणार्थियों के साथ एकजुटता का एक वैश्विक प्रतीक बना दिया था। उस ऐतिहासिक दौरे में संत पापा फ्रांसिस ने उदासीनता के भूमंडलीकरण की निंदा की थी और एक ऐसा सवाल पूछा था जो आज भी जोर से गूंजता है, तुम्हारा भाई कहाँ है? जेस्विट प्रवासी सेवा JRS के अंतर्राष्ट्रीय वकालत की सलाहकार अमाया के लिए द्वीप में संत पापा लियो की मौजूदगी एक अहम समय पर हुई है और यह एक ऐसा संदेश देती है जो इंसान को केंद्र में रखता है। वे कहती हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि संत पापा लियो के दिल में शरणार्थियों और प्रवासियों के लिए एक खास जगह है। वे बताती हैं कि संत पापा हमेशा गरीबों, कमजोर और बहिष्कृत लोगों को सुसमाचार संदेश के खास पाने वालों के तौर पर देखते हैं और लंपेदूसा के दौरे को उस यकीन का एक ठोस सबूत मानते हैं। वे यह भी बताती हैं कि उन्होंने हाल ही में शरणार्थियों के स्टेटस से जुड़े 1951 के सम्मेलन की 75वीं सालगिरह मनाई है और दूसरे विश्व युद्ध के बाद हुए अंतर्राष्ट्रीय समझौता की हमेशा रहने वाली अहमियत पर सोचा है, ताकि शरणार्थियों के अधिकारों की रक्षा की जा सके और जो लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर हैं, उन्हें कानूनी सुरक्षा दी जा सके। उनका मानना है कि संत पापा का संदेश लोगों को सीमा पर होने वाली रोकी जा सकने वाली मौतों की जिम्मेदारी लेने और दुख झेलने वालों के साथ रोने की क्षमता वापस लाने के लिए लगातार कहता रहता है। वे बताती हैं कि संत पापा बार बार उन देशों और संकटों की ओर ध्यान दिलाते हैं जो अक्सर अंतर्राष्ट्रीय शीर्षक से गायब हो जाते हैं। अपनी प्रार्थनाओं में म्यांमार और सूडान जैसी जगहों को लगातार

0: लौदेतुर येसुस क्रिस्तुस, प्रभु येसु मसीह की जय। आप सुन रहे हैं वैटिकन रेडियो। वैटिकन रेडियो के चैपल से पौत्र रोजरी माला विनती।
1: क्रूस का चिन्ह
2: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन।
1: प्रेरितों का धर्मसार,
2: स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा द्वारा गर्भ में आए और कुमारी मरियम से जन्मे, पोंतुस पिलातुस के समय दुख उठाए, क्रूस पर ठोके गए, मर गए, दफनाए गए और लिम्बुस में उतरे।

0: श्री राम और मृतकों का न्याय करने फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्रता की कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन।
1: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारे प्रतिदिन का आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब है और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
2: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: आनंद के पहला भेद, गैब्रियल दूत माता मरियम को यीशु के जन्म का संदेश देते हैं,
3: मतलब संत पापा और कलीसिया के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
2: मतलब बीमार से पीड़ित भाई बहनों के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: आनंद का तीसरा भेद, हमारे प्रभु जन्मते हैं।
2: मतलब विश्व शांति के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो।
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है। आमीन।
0: आनंद का चौथा भेद, प्रभु यीशु मंदिर में चढ़ाए जाते हैं,
2: मतलब पापियों के मन फिराव के लिए।
0: पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: आनंद का पांचवा भेद, प्रभु यीशु मंदिर में पाए जाते हैं,
2: मतलब शोधक अग्नि की दुखित आत्माओं के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है।

0: कुंवारी मरियम की स्तुति विनती। प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त दया कर,
1: ख्रिस्त दया कर,
0: प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त हमारी सुन,
1: ख्रिस्त हमारी विनती पूरी कर।
0: स्वर्ग के पिता ईश्वर
1: हम पर दया कर,
0: पुत्र ईश्वर दुनिया के मुक्तिदाता
1: हम पर दया कर,
0: पवित्र आत्मा ईश्वर
1: हम पर दया कर,
0: संत मरियम
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: ईश्वर की पवित्र माँ
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: कुंवारियों की पवित्र कुंवारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: ख्रिस्त की माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: ईश्वरीय कृपा की माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: अति निर्मल माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: अति शुद्ध माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: कुंवारी माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: निष्कलंक माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: प्रिय माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: प्रशंसनीय माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: सुसमति की माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: सृष्टिकर्ता की माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: मुक्तिदाता की माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: अति चौकस कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: आदरणीय कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: स्तुति योग्य कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: शक्तिमती कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: दयालु कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: धर्मनिष्ठ कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: हमारे आनंद का मूल
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: पवित्र आत्मा का मंदिर
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: आदरणीय पात्र
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: भक्ति का उत्तम पात्र
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: आध्यात्मिक गुलाब
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: दाऊद का गढ़
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: हस्तिदंत का गढ़
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: स्वर्ण मंदिर
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: संधि की मंजूषा
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: भोर का तारा
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: रोगियों का स्वास्थ्य
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: पापियों की शरण
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: दुखियों का दिलासा
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: ख्रिस्तियों की सहायता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: स्वर्गदूतों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: धर्म पुरखों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: नवियों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: प्रेरितों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: शहीदों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: धर्मवीरों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: संतों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: आदि पाप रहित उत्पन्न महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: स्वर्ग में उद्गृहित महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: अति पवित्र माला की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: शांति की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमें क्षमा कर।
0: हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमारी सुन।
0: हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है,
1: हम पर दया कर।
0: हम प्रार्थना करें।
1: हे प्रभु ईश्वर।

0: तुम्हारे मरियम की प्रार्थना द्वारा हमको इस लोक के दुख से मुक्त होकर अनंत सुख भोगने दे, क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा, आमेन।
1: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन।

0: लाउडेटर यीशु क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि मनुष्य सभी स्थितियों और अवस्थाओं में मानव जीवन के सम्मान और उसकी सुरक्षा के प्रति समर्पित रहें तथा जीवन को ईश्वर का वरदान माने। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण विषय हैं रविवारीय आराधना विधि चिंतन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं फादर संजय दिलीप एक्का, सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की और सिस्टर अनुग्रह मिंज।

0: श्रोताओ, सीखना मानव के जीवन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम अपने रोज दिन के जीवन में कुछ न कुछ अच्छी चीजों को और कभी कभी तो बुरी चीजों को भी सीखते हैं। इस भांति हम अपने में जिन चीजों को सीखते और उनका उपयोग अपने जीवन में करते हैं, वही चीजें हमें सफलता की मंजिल की ओर ले चलती हैं, जहां हम अपने जीवन में संतुष्टि, आनंद और शांति का अनुभव करते हैं। श्रोताओं, वर्ष के 14वें सामान्य रविवार आराधना विधि चिंतन हेतु लिए गए सुसमाचार में यीशु स्वयं हमें अपने जीवन से सीखने का निमंत्रण देते हैं। आइए हम सुसमाचार में प्रभु वचनों का श्रवण करते हुए अपने आप से पूछें, हम अपने जीवन में किन किन चीजों को सीखने की चाह रखते हैं? हमारा सीखना क्या हमें ईश्वर के लिए और दूसरों के लिए एक अच्छा मानव बनने को मदद करता है? हमारे जीवन में सीखने का क्रम किन किन बातों पर निर्भर करता है?
1: यीशु ने कहा, हे पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने इन सब बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर निरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। हाँ पिता, यही तुझे अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है। पिता को छोड़कर कोई भी पुत्र को नहीं जानता, इसी तरह पिता को कोई नहीं जानता, केवल पुत्र जानता है, और वही जिसके लिए पुत्र उसे प्रकट करने की कृपा करे। थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। इस तरह तुम अपनी आत्मा के लिए शांति पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज है और मेरा बोझ हल्का।
0: श्रोताओं, ईश्वर के जीवनदायी वचन हमें अपने जीवन में नम्रता में बने रहने को मदद करें, क्योंकि नम्रता उस उपजाऊ भूमि की भांति है जहां हम किसी भी फसल की खेती सहज और सुगमता से कर सकते हैं। श्रोताओं, नबी जकराया के ग्रंथ से लिया गया आज का पहला पाठ हमें यरूशलेम की प्रजा को उल्लास में जय जयकार करने को कहता है, क्योंकि उसके पास मुक्तिदाता अपनी नम्रता में आने वाले हैं। वे राजा हैं, लेकिन दुनियावी राजा की भांति नहीं जो शाही अंदाज में अपने लोगों के पास आते हों, बल्कि वे गधे में सवारी करते हुए अपनी दीनता और अति विनम्रता में अपने लोगों के पास आते हैं। वे अपने बीच से राज शाही ठाठ बाट को दूर करेंगे, जो इफ्राइम के रथ और यरूशलेम में युद्ध के घोड़ों स्वरूप व्यक्त किया गया है। वे अपने लोगों के मध्य शांति की स्थापना करने आते हैं। श्रोताओं, आज का पहला पाठ हमारे लिए अपने ईश्वर के दिव्य मनोभाव को व्यक्त करता है, जो अपनी प्रजा के खातिर अपने में नम्र और दीनता में प्रस्तुत होते हैं। वे अपनी प्रजा जिसे वे भेंट करने आते हैं, अपने को उनके जीवन की परिस्थितियों और मनोभावों के अनुरूप प्रस्तुत करते हैं, जिससे वे अपनी सहजता से उनके संग भेंट कर आनंदित हो सकें। दुनिया का कौन ऐसा राजा है जो अपने लोगों की भांति ही अपने को निर्धन और शक्तिहीन बना लेता है? निश्चित ही यह और कोई नहीं बल्कि सर्वोच्च शक्तिशाली संपन्न यीशु ख्रीस्त हैं। यह मानव के खातिर उनकी दरिद्रता और शक्तिहीनता है, जो प्रेम और आज्ञाकारिता को व्यक्त करती है, जिसके द्वारा हम सभी मुक्ति प्राप्त करते हैं। अतः वह जीवनदायी प्रभु हमें अपने मनोभावों को धारण करने का निमंत्रण देते हैं। श्रोताओं, रोमियों के नाम संत पौलुस के पत्र से लिया गया आज का दूसरा पाठ हमें अपने मानवीय स्वभाव को जानने, समझने और उससे ऊपर उठने की ओर हमारा ध्यान आकर्षित कराता है। संत पौलुस कहते हैं कि हम सबों में मसीह का आत्मा निवास करता है, वह आत्मा जो ख्रिस्त को मृतकों में से जिलाया। उस आत्मा का हमारे जीवन में निवास करना हमें भी अपने जीवन की कमजोरियों से ऊपर उठने को मदद करता है। मानव शरीर के रूप में हम अपने जीवन में बहुत सारी अच्छाइयों के साथ कई बुराइयों को भी वहन करते हैं, जिसमें वासना एक प्रमुख बुराई है। यह वासना हमें शारीरिक सुख तक ही सीमित कर देती है, जो हम में से हर किसी नर और नारी में एक कमजोरी है। अपने शरीर की वासनाओं पर अपनी शक्ति से हम विजयी हासिल नहीं कर सकते हैं, बल्कि इसके लिए हमें उस आत्मा से जुड़ने और उसे पहचानने की जरूरत है, जिसका पान हमें पुनर्जीवित यीशु ख्रिस्त में कराया गया है। अपने शारीरिक वासना के कारण हम स्वयं अपने में गिरते और मर जाते हैं। वहीं इस वासना से ऊपर उठने हेतु हमें नम्रता में अपने मानवीय स्वभाव को स्वीकारने की जरूरत है कि हम अपने में कमजोर और क्षण भंगुर हैं, जो किसी भी समय किसी भी परिस्थिति में टूटकर बिखर सकते हैं। अपने को ईश्वर के उस आत्मा के लिए खोलना हमें अपनी कमजोरी में मजबूती प्रदान करती है, जहां हम अपने मानवीय जीवन के रहस्य और सच्चाई को अच्छी तरह समझते हैं। श्रोताओं, आज के सुसमाचार में हमने यीशु को अपने पिता ईश्वर का धन्यवाद अदा करते हुए सुना, क्योंकि जीवन के गूढ़ रहस्यों को उन्होंने ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर निरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। यहाँ हम हमेशा की तरह मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त को हम सबों के लिए प्रार्थना करते हुए पाते हैं, जो हमारे लिए उनके प्रेम को प्रकट करता है, उसी भांति जैसे कि हम स्वयं उनके लिए प्रार्थना करते हैं जिन्हें हम सच्चे मन और दिल से प्रेम करते हैं। श्रोताओं, यीशु अपने पिता की शिक्षा को सुनने वालों और उसे अपने हृदय मन और दिल से ग्रहण करने वालों के लिए नम्रता, दीनता और दरिद्रता में बने रहने वालों के लिए पिता का धन्यवाद करते हैं। यह इसलिए कि यीशु ख्रिस्त दीन, दुखियों और गरीबों में स्वयं अपने हृदय के मनोभावों को पाते हैं। अपने पिता को धन्यवाद देते हुए यीशु ख्रिस्त आज हम सभी सुनने वालों को अपने मनोभावों से वाकिफ कराते हैं, यह कहते हुए कि मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। श्रोताओं, सीखना और सिखाना सिर्फ उसी के लिए संभव और एक तरह से आसान होता है जो अपने स्वभाव से नम्र और दीन है, क्योंकि ये दो गुण किसी भी व्यक्ति के हृदय के खुलेपन को व्यक्त करता है। अपने जीवन में सीखने के क्रम में भारी चीजों से हम स्वतः उब जाते हैं, लेकिन यीशु ख्रिस्त जिनसे बड़ा कोई भी शिक्षक हमारे लिए इस दुनिया में नहीं हो सकता है, हमें आज अपने जुए को ग्रहण करने का निमंत्रण देते हैं, यह कहते हुए कि उनका जुआ सहज है और उनका बोझ हल्का। आइए हम माता मरियम से निवेदन करें, जिन्होंने अपने बेटे यीशु ख्रिस्त के जीवन को देखा, उनकी बातों को सुना और चुपचाप अपने हृदय में उनकी बातों को धारण करते हुए सीखा। वे हमें भी नम्रता और दीनता के भाव में अपने बेटे से सीखने में मदद करें।

0: आप वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा लियो 14वें आज 4 जुलाई की सुबह विमान यात्रा कर दक्षिण इटली के द्वीप लंपेदूसा करीब 9 बजे पहुंचे और इस इलाके में अपना प्रेरितिक दौरा शुरू किया, जो अफ्रीका से समुद्र के रास्ते यूरोप जाने वाले प्रवासियों के लिए लैंडिंग प्वाइंट के तौर पर जाना जाता है। हवाई अड्डे पर स्थानीय अधिकारियों ने संत पापा का स्वागत किया। संत पापा सबसे पहले द्वीप के कब्रिस्तान गए, जहां एक ऐसी जगह भी है जहां समुद्र में अपनी जान गंवाने वालों की कब्रें हैं। कुछ देर मौन प्रार्थना करने के बाद संत पापा गेटवे टू यूरोप गए, जो एक कला स्मारक और उन प्रवासियों की याद में बनाया गया है जो यूरोप पहुँचने की कोशिश में मारे गए। इसके बाद संत पापा फाउलोरो पियर तट गए, यहाँ प्रवासियों को उतारा जाता है। संत पापा एक प्लाक को आशीर्वाद दिया जो संत पापा फ्रांसिस को समर्पित है। वहाँ उन्होंने कुछ प्रवासियों से मुलाकात की। इसके बाद संत पापा एरिना स्पोर्ट्स फील्ड गए, वहाँ लंपेदूसा के महापौर ने संत पापा का स्वागत किया। संत पापा ने महापौर के अभिवादन के जवाब में वहां उपस्थित लंपेदूसा वासियों का अभिवादन करते हुए संदेश दिया। संत पापा ने कहा, श्रीमान महापौर, महामान्यवर, जाने माने अधिकारियों, प्यारे भाइयों और बहनों, मैं लंपेदूसा और लिनोसा म्यूनिसिपालिटी की तरफ से महापौर को उनके अभिवादन के लिए धन्यवाद देता हूं और मैं आप सभी को आपके स्वागत के लिए धन्यवाद देता हूं। यह बात कि आपने फाउलोरो पियर का नाम संत पापा फ्रांसिस के नाम पर रखा है, यह उस रिश्ते की निशानी है जो मेरे पूर्ववर्ती ने आपके समुदाय और हमारे प्रवासी भाइयों और बहनों के साथ बनाया था। संत पापा आपके लिए इस बहुत मुश्किल समय में आपके करीब रहे हैं और आज मैं आपको यह बताने आया हूं कि संत पापा आपके साथ हैं, आपका साथ देते हैं और आपको हिम्मत देते हैं। मैं भाषण देने नहीं आया हूं, बल्कि पवित्र यूकरिस्त मनाने आया हूं, जो हमारे बीच ख्रीस्त की मौजूदगी का सबसे बड़ा संकेत है। येसु का रोटी तोड़कर खुद को देने का इशारा हमारी रोजाना की मदद और साझा काम को मतलब और ताकत देता है। हाँ, यह एक ऐसी जगह है जहाँ इशारे शब्दों से ज्यादा बोलते हैं, लेकिन इंसान होने के नाते इशारों के लिए दिल की जरूरत होती है। हम यहाँ इसलिए एकत्रित हुए हैं ताकि हम ख्रीस्त से वह प्यार पा सकें जो सिर्फ वही हमें दे सकते हैं, ताकि आज और कल की दुनिया सबके लिए ज्यादा मानवीय हो सके। धन्यवाद। कुछ प्रवासियों के साथ मुलाकात करने के बाद संत पापा एरिना खेल मैदान की ओर पवित्र मिसा का अनुष्ठान करने के लिए आगे बढ़े।
1: अपने उपदेश में संत पापा ने कहा, प्यारे भाइयों एवं बहनों, ईश्वर हमेशा हमसे पहले प्यार करते हैं। सागर की सुंदरता, यह द्वीप एवं आपके चेहरे उनकी इस पहल की झलक है। प्यार हमसे पहले आता है, हमें घेरता और हमें एक साथ लाता है। मैं पोप फ्रांसिस के पद चिन्हों पर चलते हुए आपसे मिलने का मौका मिलने के लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने 8 जुलाई 2013 को संत पेत्रुस के उत्तराधिकारी के रूप में अपनी पहली यात्रा के लिए लंपेदूसा जाने का फैसला किया था। जैसा कि आप जानते हैं, प्रेरितों ने भूमध्य सागर की यात्रा की थी और इसके द्वीपों एवं तटों के निवासियों के आतिथ्य का अनुभव किया था। सुसमाचार ऐसे जगहों में गूंजता है जहां लोग मिलते हैं, एक दूसरे का स्वागत करते, उनके जीवन आपस में जुड़ते और विभिन्न संस्कृतियां संवाद में संलग्न होती हैं। हालांकि यह शांत हो जाता है जब प्रत्येक व्यक्ति संपर्क से बचने और आदान प्रदान को काटने के लिए खुद को एक द्वीप बना लेता है। इस अर्थ में भले समारी का दृष्टांत, जिससे हमने सुना है, एक ऐसी कहानी का वर्णन करता है जो हमसे बात करती है। विश्वपत्र फ्रतेली तुत्ती ने हमें उन चुनौतीपूर्ण ऐतिहासिक परिस्थितियों के आलोक में इसकी पुनः जांच करने में मदद की है जिनमें हम खुद को पाते हैं। ईश्वर का वचन हमेशा प्रासंगिक है और हमें एक बातचीत के लिए प्रेरित करता है जिससे हम परिवर्तित होकर निकलते हैं। तो फिर हम उनके प्यार का जवाब कैसे दें जिसने हमसे पहले प्यार किया है? संत पापा ने कहा, आज लंपेदूसा एवं लिनोसा एक ऐसे खतरनाक रास्ते पर हैं जो यरूशलेम से यरीको जाता था। یہاں آپ نے صرف ایک نہیں بلکہ ہزاروں انسانوں کو لٹیروں کے ہاتھوں پڑتے دیکھا ہے، جنہوں نے ان سے سب کچھ چھین لیا، انہیں بری طرح پیٹا اور انہیں ادھمرا چھوڑ کر چلے گئے۔ سمندر نے کچھ لوگوں کی جان لے لی جو اپنی امید کی منزل تک نہیں پہنچ پائے، پھر بھی ہم ان کی اپستھتی محسوس کرتے ہیں جو ہمیں ان لوگوں سے کم چنوتی نہیں دیتے جنہیں دھیان ایوم مدد کی ضرورت ہے۔ سچ

और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार। आइए हम मिलकर संत पापा के साथ चलें। संत पापा की प्रेरिताएं शांति, आशा, करुणा में मदद करें। संत पापा का समर्थन करें। संत पेत्रुस के पुण्य कार्य हेतु दान करें। वेबसाइट www.avolodisantpietro.va पर जरूर जाएं।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि मनुष्य सभी स्थितियों और अवस्थाओं में मानव जीवन के सम्मान और उसकी सुरक्षा के प्रति समर्पित रहें तथा जीवन को ईश्वर का वरदान माने। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण विषय हैं रविवारीय आराधना विधि चिंतन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं फादर संजय दिलीप एक्का, सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की और सिस्टर अनुग्रह मिंज।

0: श्रोताओं, सीखना मानव के जीवन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम अपने रोज दिन के जीवन में कुछ न कुछ अच्छी चीजों को और कभी कभी तो बुरी चीजों को भी सीखते हैं। इस भांति हम अपने में जिन चीजों को सीखते और उनका उपयोग अपने जीवन में करते हैं, वही चीजें हमें सफलता की मंजिल की ओर ले चलती हैं, जहां हम अपने जीवन में संतुष्टि, आनंद और शांति का अनुभव करते हैं। श्रोताओं, वर्ष के 14वें सामान्य रविवार आराधना विधि चिंतन हेतु लिए गए सुसमाचार में यीशु स्वयं हमें अपने जीवन से सीखने का निमंत्रण देते हैं। आइए हम सुसमाचार में प्रभु वचनों का श्रवण करते हुए अपने आप से पूछें, हम अपने जीवन में किन किन चीजों को सीखने की चाह रखते हैं? हमारा सीखना क्या हमें ईश्वर के लिए और दूसरों के लिए एक अच्छा मानव बनने को मदद करता है? हमारे जीवन में सीखने का क्रम किन किन बातों पर निर्भर करता है?
1: यीशु ने कहा, हे पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने इन सब बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर निरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। हाँ पिता, यही तुझे अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है। पिता को छोड़कर कोई भी पुत्र को नहीं जानता। इसी तरह पिता को कोई नहीं जानता, केवल पुत्र जानता है, और वही जिसके लिए पुत्र उसे प्रकट करने की कृपा करे। थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। इस तरह तुम अपनी आत्मा के लिए शांति पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज है और मेरा बोझ हल्का।
0: श्रोताओं, ईश्वर के जीवनदायी वचन हमें अपने जीवन में नम्रता में बने रहने को मदद करे, क्योंकि नम्रता उस उपजाऊ भूमि की भांति है जहां हम किसी भी फसल की खेती सहज और सुगमता से कर सकते हैं। श्रोताओं, नबी जकराया के ग्रंथ से लिया गया आज का पहला पाठ हमें यरूशलेम की प्रजा को उल्लास में जय जयकार करने को कहता है, क्योंकि उसके पास मुक्तिदाता अपनी नम्रता में आने वाले हैं। वे राजा हैं, लेकिन दुनियावी राजा की भांति नहीं जो शाही अंदाज में अपने लोगों के पास आते हों, बल्कि वे गधे में सवारी करते हुए अपनी दीनता और अति विनम्रता में अपने लोगों के पास आते हैं। वे अपने बीच से राजशाही ठाठ बाट को दूर करेंगे, जो इफ्राइम के रथ और यरूशलेम में युद्ध के घोड़ों स्वरूप व्यक्त किया गया है। वे अपने लोगों के मध्य शांति की स्थापना करने आते हैं। श्रोताओं, आज का पहला पाठ हमारे लिए अपने ईश्वर के दिव्य मनोभाव को व्यक्त करता है, जो अपनी प्रजा के खातिर अपने में नम्र और दीनता में प्रस्तुत होते हैं। वे अपनी प्रजा, जिसे वे भेंट करने आते हैं, अपने को उनके जीवन की परिस्थितियों और मनोभावों के अनुरूप प्रस्तुत करते हैं, जिससे वे अपनी सहजता से उनके संग भेंट कर आनंदित हो सकें। दुनिया का कौन ऐसा राजा है जो अपने लोगों की भांति ही अपने को निर्धन और शक्तिहीन बना लेता है? निश्चित ही यह और कोई नहीं बल्कि सर्वोच्च शक्तिशाली संपन्न यीशु ख्रीस्त हैं। यह मानव के खातिर उनकी दरिद्रता और शक्तिहीनता है, जो प्रेम और आज्ञाकारिता को व्यक्त करती है, जिसके द्वारा हम सभी मुक्ति प्राप्त करते हैं। अतः वह जीवनदायी प्रभु हमें अपने मनोभावों को धारण करने का निमंत्रण देते हैं। श्रोताओं, रोमियों के नाम संत पौलुस के पत्र से लिया गया आज का दूसरा पाठ हमें अपने मानवीय स्वभाव को जानने, समझने और उससे ऊपर उठने की ओर हमारा ध्यान आकर्षित कराता है। संत पौलुस कहते हैं कि हम सबों में मसीह का आत्मा निवास करता है, वह आत्मा जो ख्रिस्त को मृतकों में से जिलाया। उस आत्मा का हमारे जीवन में निवास करना हमें भी अपने जीवन की कमजोरियों से ऊपर उठने को मदद करता है। मानव शरीर के रूप में हम अपने जीवन में बहुत सारी अच्छाइयों के साथ कई बुराइयों को भी वहन करते हैं, जिसमें वासना एक प्रमुख बुराई है। यह वासना हमें शारीरिक सुख तक ही सीमित कर देती है, जो हम में से हर किसी नर और नारी में एक कमजोरी है। अपने शरीर की वासनाओं पर अपनी शक्ति से हम विजयी हासिल नहीं कर सकते हैं, बल्कि इसके लिए हमें उस आत्मा से जुड़ने और उसे पहचानने की जरूरत है, जिसका पान हमें पुनर्जीवित यीशु ख्रिस्त में कराया गया है। अपने शारीरिक वासना के कारण हम स्वयं अपने में गिरते और मर जाते हैं। वहीं इस वासना से ऊपर उठने हेतु हमें नम्रता में अपने मानवीय स्वभाव को स्वीकारने की जरूरत है कि हम अपने में कमजोर और क्षण भंगुर हैं, जो किसी भी समय किसी भी परिस्थिति में टूटकर बिखर सकते हैं। अपने को ईश्वर के उस आत्मा के लिए खोलना हमें अपनी कमजोरी में मजबूती प्रदान करती है, जहां हम अपने मानवीय जीवन के रहस्य और सच्चाई को अच्छी तरह समझते हैं। श्रोताओं, आज के सुसमाचार में हमने यीशु को अपने पिता ईश्वर का धन्यवाद अदा करते हुए सुना, क्योंकि जीवन के गूढ़ रहस्यों को उन्होंने ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर निरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। यहाँ हम हमेशा की तरह मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त को हम सबों के लिए प्रार्थना करते हुए पाते हैं, जो हमारे लिए उनके प्रेम को प्रकट करता है, उसी भांति जैसे कि हम स्वयं उनके लिए प्रार्थना करते हैं जिन्हें हम सच्चे मन और दिल से प्रेम करते हैं। श्रोताओं, यीशु अपने पिता की शिक्षा को सुनने वालों और उसे अपने हृदय मन और दिल से ग्रहण करने वालों के लिए, नम्रता दीनता और दरिद्रता में बने रहने वालों के लिए पिता का धन्यवाद करते हैं। यह इसलिए कि यीशु ख्रिस्त दीन दुखियों और गरीबों में स्वयं अपने हृदय के मनोभावों को पाते हैं। अपने पिता को धन्यवाद देते हुए यीशु ख्रिस्त आज हम सभी सुनने वालों को अपने मनोभावों से वाकिफ कराते हैं, यह कहते हुए कि मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। श्रोताओं, सीखना और सिखाना सिर्फ उसी के लिए संभव और एक तरह से आसान होता है जो अपने स्वभाव से नम्र और दीन है, क्योंकि ये दो गुण किसी भी व्यक्ति के हृदय के खुलेपन को व्यक्त करता है। अपने जीवन में सीखने के क्रम में भारी चीजों से हम स्वतः उब जाते हैं, लेकिन यीशु ख्रिस्त जिनसे बड़ा कोई भी शिक्षक हमारे लिए इस दुनिया में नहीं हो सकता है, हमें आज अपने जुए को ग्रहण करने का निमंत्रण देते हैं, यह कहते हुए कि उनका जुआ सहज है और उनका बोझ हल्का। आइए हम माता मरियम से निवेदन करें, जिन्होंने अपने बेटे यीशु ख्रिस्त के जीवन को देखा, उनकी बातों को सुना और चुपचाप अपने हृदय में उनकी बातों को धारण करते हुए सीखा। वे हमें भी नम्रता और दीनता के भाव में अपने बेटे से सीखने में मदद करें।

0: आप वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा लियो 14वें आज 4 जुलाई की सुबह विमान यात्रा कर दक्षिण इटली के द्वीप लंपेदूसा करीब 9 बजे पहुंचे और इस इलाके में अपना प्रेरितिक दौरा शुरू किया, जो अफ्रीका से समुद्र के रास्ते यूरोप जाने वाले प्रवासियों के लिए लैंडिंग प्वाइंट के तौर पर जाना जाता है। हवाई अड्डे पर स्थानीय अधिकारियों ने संत पापा का स्वागत किया। संत पापा सबसे पहले द्वीप के कब्रिस्तान गए, जहां एक ऐसी जगह भी है जहां समुद्र में अपनी जान गंवाने वालों की कब्रें हैं। कुछ देर मौन प्रार्थना करने के बाद संत पापा गेटवे टू यूरोप गए, जो एक कला स्मारक और उन प्रवासियों की याद में बनाया गया है जो यूरोप पहुंचने की कोशिश में मारे गए। इसके बाद संत पापा फाउलोरो पियर तट गए, यहाँ प्रवासियों को उतारा जाता है। संत पापा एक प्लाक को आशीर्वाद दिया जो संत पापा फ्रांसिस को समर्पित है। वहाँ उन्होंने कुछ प्रवासियों से मुलाकात की। इसके बाद संत पापा एरिना स्पोर्ट्स फील्ड गए, वहाँ लंपेदूसा के महापौर ने संत पापा का स्वागत किया। संत पापा ने महापौर के अभिवादन के जवाब में वहाँ उपस्थित लंपेदूसा वासियों का अभिवादन करते हुए संदेश दिया। संत पापा ने कहा, श्रीमान महापौर, महामान्यवर, जाने माने अधिकारियों, प्यारे भाइयों और बहनों, मैं लंपेदूसा और लिनोसा म्यूनिसिपालिटी की तरफ से महापौर को उनके अभिवादन के लिए धन्यवाद देता हूं और मैं आप सभी को आपके स्वागत के लिए धन्यवाद देता हूं। यह बात कि आपने फाउलोरो पियर का नाम संत पापा फ्रांसिस के नाम पर रखा है, यह उस रिश्ते की निशानी है जो मेरे पूर्ववर्ती ने आपके समुदाय और हमारे प्रवासी भाइयों और बहनों के साथ बनाया था। संत पापा आपके लिए इस बहुत मुश्किल समय में आपके करीब रहे हैं और आज मैं आपको यह बताने आया हूं कि संत पापा आपके साथ हैं, आपका साथ देते हैं और आपको हिम्मत देते हैं। मैं भाषण देने नहीं आया हूं, बल्कि पवित्र यूकरिस्त मनाने आया हूं, जो हमारे बीच ख्रीस्त की मौजूदगी का सबसे बड़ा संकेत है। यीशु का रोटी तोड़कर खुद को देने का इशारा हमारी रोजाना की मदद और साझा काम को मतलब और ताकत देता है। हाँ, यह एक ऐसी जगह है जहाँ इशारे शब्दों से ज्यादा बोलते हैं, लेकिन इंसान होने के नाते इशारों के लिए दिल की जरूरत होती है। हम यहाँ इसलिए एकत्रित हुए हैं ताकि हम ख्रीस्त से वह प्यार पा सकें जो सिर्फ वही हमें दे सकते हैं, ताकि आज और कल की दुनिया सबके लिए ज्यादा मानवीय हो सके। धन्यवाद। कुछ प्रवासियों के साथ मुलाकात करने के बाद संत पापा एरिना खेल मैदान की ओर पवित्र मिसा का अनुष्ठान करने के लिए आगे बढ़े।
1: अपने उपदेश में संत पापा ने कहा, प्यारे भाइयों एवं बहनों, ईश्वर हमेशा हमसे पहले प्यार करते हैं। सागर की सुंदरता, यह द्वीप एवं आपके चेहरे उनकी इस पहल की झलक है। प्यार हमसे पहले आता है, हमें घेरता और हमें एक साथ लाता है। मैं पोप फ्रांसिस के पद चिन्हों पर चलते हुए आपसे मिलने का मौका मिलने के लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने 8 जुलाई 2013 को संत पेत्रुस के उत्तराधिकारी के रूप में अपनी पहली यात्रा के लिए लंपेदूसा जाने का फैसला किया था। जैसा कि आप जानते हैं, प्रेरितों ने भूमध्य सागर की यात्रा की थी और इसके द्वीपों एवं तटों के निवासियों के आतिथ्य का अनुभव किया था। सुसमाचार ऐसे जगहों में गूंजता है जहां लोग मिलते हैं, एक दूसरे का स्वागत करते, उनके जीवन आपस में जुड़ते और विभिन्न संस्कृतियां संवाद में संलग्न होती हैं। हालांकि यह शांत हो जाता है जब प्रत्येक व्यक्ति संपर्क से बचने और आदान प्रदान को काटने के लिए खुद को एक द्वीप बना लेता है। इस अर्थ में भले समारी का दृष्टांत, जिससे हमने सुना है, एक ऐसी कहानी का वर्णन करता है जो हमसे बात करती है। विश्वपत्र फ्रतेली तुत्ती ने हमें उन चुनौतीपूर्ण ऐतिहासिक परिस्थितियों के आलोक में इसकी पुनः जांच करने में मदद की है जिनमें हम खुद को पाते हैं। ईश्वर का वचन हमेशा प्रासंगिक है और हमें एक बातचीत के लिए प्रेरित करता है जिससे हम परिवर्तित होकर निकलते हैं। तो फिर हम उनके प्यार का जवाब कैसे दें जिसने हमसे पहले प्यार किया है? संत पापा ने कहा, आज लंपेदूसा एवं लिनोसा एक ऐसे खतरनाक रास्ते पर हैं जो यरूशलेम से यरीखो जाता था। यहाँ आपने सिर्फ एक नहीं बल्कि हजारों इंसानों को लुटेरों के हाथों पड़ते देखा है, जिन्होंने उनसे सब कुछ छीन लिया, उन्हें बुरी तरह पीटा और उन्हें अधमरा छोड़कर चले गए। समुद्र ने कुछ लोगों की जान ले ली जो अपनी उम्मीद की मंजिल तक नहीं पहुँच पाए, फिर भी हम उनकी उपस्थिति महसूस करते हैं जो हमें उन लोगों से कम चुनौती नहीं देते जिन्हें ध्यान एवं मदद की जरूरत है। सचमुच किसी भी सोच विचार या वैचारिक मान्यता से पहले उन लोगों से मिलना जो हमारे सामने हैं, जिनका सब कुछ छीन लिया गया है, हमें उनके करीब आने के लिए कहता है। संत पाप ने अप्रवासियों की मदद करने वाले लोगों को संबोधित कर कहा, मैं आप लोगों को धन्यवाद देने आया हूँ उस एकात्मकता के लिए जिसको आप में से बहुतों ने दिखाई है। दया का चमत्कार एक बार फिर हुआ है, उन्होंने उन्हें देखा और उन पर दया की। यह एक आंतरिक क्रांति है जो हमारे अंदर ईश्वर के दिल को सामने लाती है। पोप लियो 14वें लंपेदूसा में अपनी एक दिवसीय प्रेरित यात्रा समाप्त कर दोपहर करीब 2 बजे वापस वैटिकन लौटे। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार। आइए हम मिलकर संत पापा के साथ चलें। संत पापा की प्रेरिताएं शांति, आशा, करुणा में मदद करें। संत पापा का समर्थन करें। संत पेत्रुस के पुण्य कार्य हेतु दान करें। वेबसाइट www.obolodisanpietro.va पर जरूर जाएं।